हमेशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: चुड़ चुड़ वेले सुपर कूल स्टाइल सारदा साड़े ओड़ समर फुला कूल
4: जिल जिल सम्मा कुल कुल शॉपिंग तिरची सारदास।

0: காரமடை ஸ்ரீ சக்தி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அட்டானமஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன், கல்வி, திறன், வேலை வாய்ப்பு என மூன்றின் சங்கமம்.
1: 39 ஆண்டு நம்பிக்கையும் நம்பகத்தன்மையும் கொண்ட கல்வி நிறுவனம் TNEA கவுன்சிலிங்கில் கடந்த 5 வருடங்களாக அதிக மாணவர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட டாப் 5 பொசிஷன் பெற்ற கல்லூரி.
0: கிளப்ஸ், போரம் அண்ட் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் பெற்ற கல்லூரி. அனைத்து துறைகளிலும் முதலாம் ஆண்டு முதலே கார்ப்பரேட் பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங், உலகத்தர MNC பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்.
1: ஸ்ரீ சக்தி இன்ஜினியரிங் காலேஜ், காரமடை, கோயம்புத்தூர். ஃபார் அட்மிஷன் கால் 9244500444.
2: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
3: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
4: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
3: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।